सच्चे दुश्मन है ये जो मिलावट करते हैं। इनकी बदौलत कितने लोग बहुत से पहले मरते हैं। ऐसे लोगों को पकड़

0: काय राम राव सांगा सांगा
1: कोकिला मैना कबूतर
0: नहीं रे बालानो छोकरा तुम जानता है बोलो कोंबड़ी का पिल्लू।

तेरे घर के सामने इस फिल्म से गीत आपने सुना मोहम्मद रफी और लता मंगेशकर ने गाया हुआ, लिखा था हसरत जयपुरी ने, संगीत से सजाया था एस डी बर्मन ने। दोस्तों ये घर तो इतनी बड़ी दुनिया से भी बढ़कर होता है, जहां हम रहते हैं हमारे अपने रहते हैं। दिन भर की थकान के बाद घर पर खिलते मुस्कुराते चेहरे देखकर पिताजी को कितना सुकून मिलता है ये तो हम और आप सब जानते हैं। कोई अपनी राह देख रहा है यह सोच कितनी मायने रखती है सचमुच। इसलिए तो घर हर इंसान के लिए बड़ा ही अहमियत रखता है।

0: साथ साथ इस फिल्म से गीत आपने अभी सुना, गाया था चित्रा सिंह और जगजीत सिंह ने, लिखा था जावेद अख्तर ने, संगीत से सजाया था कुलदीप सिंह ने। दोस्तों, क्या केवल चार दीवारों को घर कहा जाएगा? नहीं, घर में बसे इंसान इस चार दीवारी को घर के नाम से सजाते हैं। इन इंसानों से जुड़ी होती है भावनाएं, एक दूसरे के लिए कुछ करने की उम्मीदें जीने की राह दिखाती है। माता पिता, पत्नी, बच्चे, मेहमानों से जब घर भरा रहता है तभी वो घर कहलाता है, वरना सूना मकान तो कुछ काम का नहीं।
1: दो दीवाने शहर में,

दिल ने पुकारा, आप सुन रहे हैं दोस्तों, आपने ट्यून किया है रेडियो विश्वास 90.8। मैं हूँ प्रांजलि आपके साथ और हम आज बातें कर रहे हैं घरौंदे के बारे में। अभी जो गीत आपने सुना वो था फिल्म घरौंदा से, गाया था भूपेंद्र सिंह और रूना लैला ने, लिखा था गुलजार ने और संगीत से सजाया था जयदेव ने। आबदाना, आशियाना, हवेली, बंगलो, फ्लैट, हाउस, होम, मकान, जिनमें बसते हैं इंसान, पर इस घर से पता चलती है व्यक्ति की आर्थिक हालत भी। और फिर शुरू होती है कुछ अलग सी बातें। जिनका घर छोटा होता है वह बड़ा घर चाहते हैं, जिनका बड़ा घर होता है वह बंगला चाहते हैं, बंगले वाले बड़ी हवेली चाहते हैं, जितना बड़ा पैसा उतना बड़ा घर, एक नहीं अनेकों घर जिसकी भी कोई मर्यादा ही नहीं। लेकिन दोस्तों, इतने सारे घर बनाकर भी क्या अगर इंसान खुश रहता है? रहने के लिए कितनी जगह लगती है? कुछ भी नहीं, बस एक घर ही काफ़ी है जिनमें सब सारी सुविधाएं हों, पर हाँ, हंसते खिलते चेहरे ज़रूर हों।

दिल ने पुकारा में अभी आपने सुना फिल्म आवारा का गीत, लिखा था शंकर जयकिशन ने, लिखा था शैलेंद्र ने, संगीत से सजाया था शंकर जयकिशन ने और गाया था लता मंगेशकर ने। दोस्तों, घर राहत तकता है उसमें बसे लोगों की आंखों से, घर वापस बुलाता है जो छोड़ जाना चाहते हैं, घर ही ताकत है उसमें रहने वाले इंसानों की। ये दीवारें भले ही मिट्टी सीमेंट की बनी हो पर घर के इंसानों के लिए यही प्रेम की दीवारें हैं, मर्यादाओं की दीवारें हैं, संस्कारों की भी दीवारें हैं।

कभी कभी इस फिल्म से गीत आपने सुना, लता मंगेशकर का गाया, लिखा था साहिर लुधियानवी ने, संगीत से सजाया था खयाम ने। तो दोस्तों, घर घर की एक कहानी है, घर के बिना ये जिंदगी सुनी है, तो घर में बैठकर चैन से सुनते रहिए रेडियो विश्वास। सुनते

हमारे राजस्थान के राजपुताने के, जहाँ से मैं, जहाँ पैदा हुआ हूँ, जिला झुंझुनू, नूना, जयपुर मांड, एक झलक थोड़ी सी पेश करूँगा, उसके बाद आपकी फरमाइश सब रखी हुई मैं पेश करूँगा।

तेरे घर के सामने इस फिल्म से गीत आपने सुना, मोहम्मद रफी और लता मंगेशकर ने गाया हुआ। लिखा था हसरत जयपुरी ने, संगीत से सजाया था एस डी बर्मन ने। दोस्तों, ये घर तो इतनी बड़ी दुनिया से भी बढ़कर होता है। जहां हम रहते हैं, हमारे अपने रहते हैं। दिन भर की थकान के बाद घर पर खिलते मुस्कुराते चेहरे देखकर पिताजी को कितना सुकून मिलता है, ये तो हम और आप सब जानते हैं। कोई अपनी राह देख रहा है, यह सोच कितनी मायने रखती है। सचमुच इसलिए तो घर हर इंसान के लिए बड़ा ही अहमियत रखता है।

0: साथ साथ इस फिल्म से गीत आपने अभी सुना, गाया था चित्रा सिंह और जगजीत सिंह ने, लिखा था जावेद अख्तर ने, संगीत से सजाया था कुलदीप सिंह ने। दोस्तों, क्या केवल चार दीवारों को घर कहा जाएगा? नहीं, घर में बसे इंसान इस चार दीवारी को घर के नाम से सजाते हैं। इन इंसानों से जुड़ी होती है भावनाएं, एक दूसरे के लिए कुछ करने की उम्मीदें जीने की राह दिखाती है। माता पिता, पत्नी, बच्चे, मेहमानों से जब घर भरा रहता है तभी वो घर कहलाता है, वरना सूना मकान तो कुछ काम का नहीं।
1: दो दीवाने शहर में।

दिल ने पुकारा, आप सुन रहे हैं। दोस्तों, आपने ट्यून किया है रेडियो विश्वास 90.8। मैं हूँ प्रांजलि आपके साथ, और हम आज बातें कर रहे हैं घरौंदे के बारे में। अभी जो गीत आपने सुना वो था फिल्म घरौंदा से, गाया था भूपेंद्र सिंह और रूना लैला ने, लिखा था गुलजार ने और संगीत से सजाया था जयदेव ने। आबदाना, आशियाना, हवेली, बंगलो, फ्लैट, हाउस, होम, मकान, जिनमें बसते हैं इंसान, पर इस घर से पता चलती है व्यक्ति की आर्थिक हालत भी। और फिर शुरू होती है कुछ अलग सी बातें। जिनका घर छोटा होता है वह बड़ा घर चाहते हैं, जिनका बड़ा घर होता है वह बंगला चाहते हैं, बंगले वाले बड़ी हवेली चाहते हैं, जितना बड़ा पैसा उतना बड़ा घर, एक नहीं अनेकों घर जिसकी भी कोई मर्यादा ही नहीं। लेकिन दोस्तों, इतने सारे घर बनाकर भी क्या अगर इंसान खुश रहता है? रहने के लिए कितनी जगह लगती है? कुछ भी नहीं, बस एक घर ही काफी है जिनमें सब सारी सुविधाएं हों, पर हाँ, हंसते खिलते चेहरे जरूर हों।

दिल ने पुकारा में अभी आपने सुना फिल्म आवारा का गीत, लिखा था शंकर जयकिशन ने, लिखा था शैलेंद्र ने, संगीत से सजाया था शंकर जयकिशन ने और गाया था लता मंगेशकर ने। दोस्तों, घर राहत तकता है उसमें बसे लोगों की आंखों से, घर वापस बुलाता है जो छोड़ जाना चाहते हैं, घर ही ताकत है उसमें रहने वाले इंसानों की। ये दीवारें भले ही मिट्टी सीमेंट की बनी हों पर घर के इंसानों के लिए यही प्रेम की दीवारें हैं, मर्यादाओं की दीवारें हैं, संस्कारों की भी दीवारें हैं।

0: कभी कभी इस फिल्म से गीत आपने सुना, लता मंगेशकर का गाया, लिखा था साहिर लुधियानवी ने, संगीत से सजाया था खय्याम ने। तो दोस्तों, घर घर की एक कहानी है, घर के बिना ये जिंदगी सुनी है, तो घर में बैठकर चैन से सुनते रहिए रेडियो विश्वास, सुनते रहिए, सुनाते रहिए आपकी जिंदगी, आपकी आवाज। आज के प्रोग्राम में यही आपसे इजाजत लूंगी, फिर मिलेंगे अगले मंगलवार। नमस्कार।
1: कार्यक्रमात आता ऐकूयात अधिकार या चित्रपटामधलं गीत। हे गीत आहे रमेश पंत यांचं, गीताला संगीत आहे राहुल देव बर्मन यांचं, आणि हे गीत ऐकूयात आशा भोसले यांच्या आवाजात।

गुड इवनिंग एवरीबॉडी, मुझे कुछ कहना है। मैं नहीं देख सकती किसी को उदास, बुझाती हूँ आंखों से आंखों के प्यार।

0: मेरी सूरत के तलबगार मगर क्या जाने
1: कि मेरा मारा हुआ दुनिया में ना पानी मांगे।
2: वाह

0: अरे मामा, तू यहाँ अय्याशी कर रहा है और ऊपर से तेरा भांजा आ रहा है।
1: हैं? भांजा आ रहा है? अब क्या होगा? देवियों, भागो यहाँ से।
2: मगर मामा, भागने के लिए कोई रास्ता भी तो नहीं।

क्या हुस्न है जो इश्क ना जाने, दिलदार को और यार को बिल्कुल ना पहचाने, मेरी वफा

मैं सुधर गई थी, ये ना आप तुम कभी आओगे और ना मुझे कभी बुलाओगे, पर तुमने मुझे बुला लिया। तुम मुझे नर्तकी नहीं समझते हो ना, धन्य हो गोपाल, तुम पहले इंसान हो जिसने मुझे अपनी नजर से देखा है, समाज की नजरों से नहीं देखा। कितने अच्छे हो तुम, ये चाहता है अपने आप को तुम्हारे चरणों पर निछावर कर दूं। सुना तुमने, हम दोनों की बात गांव भर में फैल गई है, तुम्हें तो मालूम भी नहीं लोग हमारे बारे में कैसी ऐसी बातें करते हैं। वो कहते हैं कि मुझे तुमसे और तुम्हें

तुमने अपनी आवाज बाली को पार, तुम्हारे खोए हुए स्वर्ग में वापस मिली। हाय आज देवी माँ से कुछ और भी मांगती थी। गाओ गोपाल गाओ, इस नौजीवन की बसंत बहार गाओ।

0: आशिकों के सरदार।
1: तौबा तौबा, ये आज मेरी चश्मे आवारा क्या देख रही है नजारा, के मेरा रकीब तेरे करीब, अरे फूटे नसीब। आपकी तारीफ
2: एक आशिक गरीब।